0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई की अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज भाग 4, एक बड़ी पकड़, संबंधों में परिवर्तन की हम चर्चा कर रहे हैं। हमने अपने विगत प्रसारण में रोम के धर्माध्यक्ष की सेवा के संबंध में जिक्र किया। हम इस पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं। विश्व प्रेरितिक पत्र प्रेदिकाते एवेंजेलियम, सुसमाचार का प्रचार करें, यह रोमन कुरिया की सेवा को एक सिनोडल और प्रेरितिक स्वरूप प्रदान करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि यह संत, पापा और धर्माधर्शकों के बीच का संबंध नहीं, बल्कि अपने उचित तौर तरीकों में दोनों की सेवा का स्वरूप है। इसका कार्यान्वयन विभागों के बीच और अधिक सहयोग की मांग करती है और स्थानीय कलिसियाओं को सुनने हेतु प्रोत्साहन देता है। कोई भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशिका के प्रकाशन पूर्व विभागों से इस बात की मांग की जाती है कि वे धर्माध्यक्षीय सम्मेलन और पूर्वी रीति की कलिसियाओं के संग विचार विमर्श का पहल करें जो उनकी संरचनाओं से ताल्लुकात रखता है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के उपयुक्त तार्किक बिंदुओं के आधार पर कुरिया के कार्यों का मूल्यांकन की परिकल्पना की जा सकती है। एक ऐसा मूल्यांकन जो एक सिनोडल और प्रेरितिक संदर्भ के आधार पर होता है, जो अपने में परम धर्म पीठी और प्रतिनिधियों तक विस्तृत हो सकता है। अद लिमिना अर्थात 5 साल में एक मर्तबा संत पापा से क्षेत्रीय धर्माधर्शकों का मिलन, जिससे वे अपने धर्म प्रांत की स्थिति से उन्हें वाकिफ करा सकें। यह एक स्थानीय कलिसिया के धर्माध्यक्षों और संत पापा, रोम के धर्माध्यक्ष और रोमन कोरिया के उनके निकटतम सहयोगियों के मध्य एक शीर्ष संबंध को व्यक्त करता है। बहुत से धर्माध्यक्ष गण इस भेंट के संबंध में इस बात की चाह रखते हैं कि इसका आयोजन इस भांति हो कि यह एक अधिक खुला अवसर बने, जहां विचारों का आदान प्रदान और एक दूसरे को सुना जा सके। उनकी सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए यह आवश्यक है कि कलिसिया की भलाई हेतु धर्माधर्शकों को चाहिए कि वे एक दूसरे से भली भांति परिचित हों और उनके बीच एकता का संबंध कायम रहता हो। सिनोडालिटी उनके लिए संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के संग उनके आपसी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करे और वे अपनी आत्मपरख के माध्यम साधारण और अति विशेष बातों में निर्णय लें। श्रोताओं, धर्माध्यक्षों की धर्म सभा हमारे लिए एक प्रत्यक्ष सिनोडल और धर्माध्यक्ष मंडल में सहयोग के स्थल स्वरूप उभर कर आती है। प्रेरितिक संविधान में धर्माध्यक्षीय एकता को हम एक कलिसियाई प्रक्रिया के रूप में परिणत पाते हैं। संत पापा संत पॉल छाटवें ने सिनोड की स्थापना की, जो धर्माध्यक्षकों की आम सभा को संदर्भित करता है, जिसका आयोजन रोम के परमाध्यक्ष की सहायता हेतु किया जाता है, जो वैश्विक कलिस्य की देख रेख की जिम्मेदारी को अपने में वहन करते हैं। आज एक स्तर की प्रक्रिया में विभाजित यह ईश प्रजा धर्माध्यक्षीय मंडल और संत पापा के मध्य विशेष संबंध को पोषित करता है। ईश्वर की सारी प्रजा धर्माध्यक्ष गण जिन्हें ईश्वर की प्रजा का एक छोटा अंग सुपुर्द किया जाता है और रोम के धर्माध्यक्ष पूरी सिनोडल प्रक्रिया में भाग लेते और हर कोई अपने को मिली जिम्मेदारी के अनुरूप कार्यों का निष्पादन करते हैं। इस सहभागिता की अभिव्यक्ति संत पापा के इर्द गिर्द धर्म सभा के विभिन्न मिलनों में होती है जो हमारे लिए कलिसिया में ख्रिस्त यता को प्रकट करती है। विशेष रूप से जैसे कि संत पापा फ्रांसिस ने इसका जिक्र किया, धर्माध्यक्षकों की 16वीं धर्म सभा की रूपरेखा एक आकस्मिक घटना से बढ़कर है। यह धर्माध्यक्षीय प्रेरिताई के क्रियान्वयन में एक माध्यम को व्यक्त करता है जो कलिस्य की एक सजीव परंपरा और द्वितीय वैटिकन महासभा की शिक्षा पर आधारित है। धर्म सभा के धर्माध्यक्ष अपनी धर्माध्यक्षीय प्रकृति को बनाए रखते हुए इस बात को देखते और भविष्य में दूसरे ईश प्रजा की सहभागिता को देखेंगे। कलिस्य में धर्माध्यक्ष के अधिकार का उपयोग जिस रूप में किया जाता है वह प्रेरिताई के लिए अनिवार्य रूप से संबंधों की सचेतना को व्यक्त करता है जो उसे धर्म सभा निरूपित करता है। धर्म सभा के धर्माध्यक्षकों की गहरे संबंध में इस बात की आवश्यकता को पाते हैं कि वे ईश प्रजा धर्माध्यक्षीय मंडल के कार्यों और संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के संग जुड़े होते हों जो ठोस रूप में पूरे आम सभा के धर्माध्यक्षीय प्रक्रिया में व्यक्त होती है। श्रोताओं, 2021 से 2024 की धर्म सभा के अति विशेष फलों में हम एकतावर्धक उत्साह को पाते हैं। एक माध्यम की खोज जिसके द्वारा प्राथमिकता का क्रियान्वयन किया जा सके, यद्यपि यह एक खुली परिस्थिति है। यह सिनोडल कलिसिया और ख्रिस्तीय एकता दोनों के लिए एक मूलभूत चुनौती बनती है। धर्म सभा एकता को बढ़ावा देने हेतु परम धर्म पीठ के वर्तमान प्रकाशन रोम के धर्माध्यक्ष एकतावर्धक वार्ता और विश्व पत्र उत उनुम सिंध के प्रत्युत्तर का स्वागत करता है जो आगे शोध हेतु मार्गों को प्रशस्त करता है। इस दस्तावेज में इस तथ्य की अभिव्यक्ति है कि ख्रिस्तीय एकता का प्रचार करना रोम के धर्माध्यक्ष की प्रेरिताई का एक अति मुख्य कार्य है और एकतावर्धक वार्ता की यात्रा ने इस संबंध में एक गहरी समझ को पोषित किया है। इसमें प्रथम वैटिकन महासभा की प्राथमिकता पर बनी कट्टर परिभाषाओं को फिर से पढ़ने या उन पर आधिकारिक टिप्पणी करने के बारे में ठोस प्रस्ताव है। संत पापा की अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच अंतर स्पष्ट, कलिस्य के अंदर और दुनिया के साथ उसके रिश्ते में सिनोडालिटी को बढ़ावा देना और कलिसियाओं की एकता के आदर्श की तलाश शामिल है जो एकतावर्धक यात्रा के लिए अच्छी संभावनाएं उत्पन्न करती हैं। धर्म सभा इस बात की आशा करती है यह दस्तावेज दूसरे ख्रिस्तियों से विचार मंथन करने हेतु एक आधार बने, एक साथ मिलकर निश्चित रूप में जिसे हम रोम के धर्माध्यक्ष की एकता हेतु प्रेरिताई स्वरूप पाते हैं जो उसे प्रेम की सेवा बनाती है जो सभों के द्वारा पहचानी जाती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माध्यक्षकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कनाडा में संत जेरोम विश्वविद्यालय ने एक नए संत पापा फ्रांसिस संस्थान की घोषणा की है, जिसका मकसद कनाडा और दुनिया भर में दिवंगत संत पापा फ्रांसिस की विरासत को आगे बढ़ाना है। यह संस्थान, जिसे दुनिया में अपनी तरह का पहला माना जाता है, संत पापा फ्रांसिस के मजिस्टेरियम से जुड़े कोर्स,

सर डॉक्टर मिहान कहते हैं कि संत पापा फ्रांसिस का संदेश हमारे समय के लिए सही है और नए संस्थान का काम उस विरासत को जिंदा रखना होगा। वे कहते हैं कि एक कैथोलिक विश्वविद्यालय एक कैथोलिक हॉस्पिटल की तरह होती है। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने विश्वविद्यालय से बाहर दुनिया की सेवा करें। इसलिए हालांकि एक बड़ा फोकस कलीसिया के अंदर अच्छा करना होगा। डॉक्टर मिहान इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें पता चल जाएगा कि हम सच में अपना काम कर रहे हैं जब संस्थान गैर कैथोलिकों को भी आकर्षित करेगा। डॉक्टर मिहान से बात करने पर ऐसा लगता है कि संत पापा फ्रांसिस के बाद संत पापा लियो 14वें के परमाध्यक्ष बनने से संस्थान को नई रफ्तार मिली है। डॉक्टर मिहान कहते हैं, संत पापा लियो के परमाध्यक्ष बनने के बाद अब तक के दो मुख्य विषय हैं, सिनोडालिटी और द्वितीय वाटिकन महासभा को लागू करना। संत पापा लियो ने महासभा के मुख्य दस्तावेज पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से धर्म शिक्षा की एक लंबी सीरीज समर्पित की है। डॉक्टर मिहान बताते हैं कि ये विषय संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्ष बनने के समय के मुख्य विषय थे और इस साल के अंत में जब नया संस्थान आधिकारिक तौर पर खुलेगा तो ये उनके केंद्र में होंगे। उधर सिनड के मुख्य सचिवालय के महासचिव कार्डिनल ग्रेच 104वें कैथोलिक के टांग में सबसे ऊंचे पद पर वाटिकन के प्रतिनिधि थे, जो इस साल जर्मनी के बुर्जबर्ग में हुआ था। शनिवार को कार्डिनल ने बुर्जबर्ग कांग्रेस सेंटर में सिनोडालिटी पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया, जहां उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित किया। रविवार को उन्होंने समाप्ति मिस्सा समारोह का अनुष्ठान किया और संत पापा लियो की करीबी और आशीर्वाद भरा एक संदेश पढ़ा। कार्डिनल ग्रेच ने कहा, वे आपके करीब रहते हैं और एकता एवं मेल जोल के समर्थन में पूरे दिल से आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर वे आज यहाँ होते तो मुझे यकीन है कि वे आपसे कहते, हिम्मत रखें और आगे बढ़ें। कार्डिनल के मुताबिक एक सच्चे सिनोडल कलीसिया का भविष्य तभी होता है जब वह पवित्र आत्मा के लिए खुली रहती है। उन्होंने कहा, हमें स्थानीय कलीसिया के लिए स्थानीय धर्माध्यक्षों की प्रेरिताई और विश्वव्यापी कलीसिया के लिए परमाध्यक्षीय प्रेरिताई से बहुत आशीर्वाद मिला है। ये दोनों मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करें। अपने भाषण में उन्होंने प्रतिभागियों को सिनोडालिटी को एक स्वर की समता की तरह सोचने के लिए कहा, जिसमें हर वाद्य यंत्र की अपनी भूमिका और वैधता होती है, लेकिन उनमें तालमेल सबसे ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिस्सा लेना और साथ देना एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े रहने चाहिए। सबसे बढ़कर कलीसिया को पवित्र आत्मा के काम के लिए जगह बनानी चाहिए और अपने मिशनरी पहलू को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उधर अमेरिकी कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन USCCB 10 से 12 जून तक ऑरलैंडो फ्लोरिडा में अपनी बसंत पूर्णकालीन सम्मेलन 2026 करेगी। सम्मेलन में धर्माध्यक्ष पौत्र मिस्सा के दौरान अमेरिका को येसु के पौत्र हृदय को समर्पित करेंगे। प्रतिष्ठापन का काम गुरुवार 11 जून को होगा और धर्माध्यक्ष पौत्र मिस्सा से पहले पौत्र हृदय पर एक चिंतन सुनेंगे। यह प्रतिष्ठापन काम ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका 4 जुलाई को स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने की 250वीं सालगिरह मना रहा है। इस पहल से उम्मीद है कि इस समारोह में ज्यादा से ज्यादा कैथोलिक भाग लेंगे और इसे USCCB YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। पल्लियां और हर कैथोलिक को प्रतिष्ठापन की तैयारी के लिए 250 घंटे की आराधना या 250 दया के कामों में भाग लेने के लिए बुलाया जा रहा है। 2024 में स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस ने येसु के पौत्र हृदय के इंसानी और दिव्य प्रेम पर अपना विश्व पत्र दिलेक्सित नोस जारी किया था, जिसमें भक्ति को आज के दिखावटीपन के इलाज के तौर पर बताया गया था। उधर बंदूकधारियों ने अमेरिका के इस्लामिक सेंटर पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 2 हमलावरों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस इस हत्या

हत्याकांड के मकसद की जांच कर रही है। अमेरिका के सान डिएगो के समय अनुसार दोपहर से कुछ देर बाद अलार्म बजा। पुलिस स्थानीय मस्जिद पहुंची, जहां गोली लगने से 3 लोग मरे पड़े मिले, जिनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड भी था, जिसने अधिकारियों के मुताबिक एक बड़ी घटना को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। कुछ ही मिनटों में कुछ ब्लॉक दूर नई गोलीबारी का एक और अलर्ट जारी किया गया। भाग्य से कोई और नुकसान नहीं हुआ। फिर हमलावरों ने खुद को एक कार में बंद कर लिया, जहां वे खुद को लगी चोटों से मरे हुए पाए गए। खबर है कि पैसेंजर कंपार्टमेंट में इस्लाम विरोधी संदेश मिले। इस हत्याकांड की जांच चल रही है, लेकिन मध्य पूर्व के अशांत हालात को देखते हुए पुलिस इसे घृणा अपराध के तौर पर देख रही है। पास के अल राशिद स्कूल को भी सुरक्षित कर लिया गया था और बिल्डिंग में मौजूद सभी बच्चों को तुरंत निकाल लिया गया था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटुर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई की अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज भाग 4, एक बड़ी पकड़, संबंधों में परिवर्तन की हम चर्चा कर रहे हैं। हमने अपने विगत प्रसारण में रोम के धर्माध्यक्ष की सेवा के संबंध में जिक्र किया। हम इस पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं। विश्व प्रेरितिक पत्र प्रेदिकाते एवेंजेलियम, सुसमाचार का प्रचार करें, यह रोमन कुरिया की सेवा को एक सिनोडल और प्रेरितिक स्वरूप प्रदान करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि यह संत, पापा और धर्माधर्शकों के बीच का संबंध नहीं, बल्कि अपने उचित तौर तरीकों में दोनों की सेवा का स्वरूप है। इसका कार्यान्वयन विभागों के बीच और अधिक सहयोग की मांग करती है और स्थानीय कलिसियाओं को सुनने हेतु प्रोत्साहन देता है। कोई भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशिका के प्रकाशन पूर्व विभागों से इस बात की मांग की जाती है कि वे धर्माध्यक्षीय सम्मेलन और पूर्वी रीति की कलिसियाओं के संग विचार विमर्श का पहल करें जो उनकी संरचनाओं से ताल्लुकात रखता है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के उपयुक्त तार्किक बिंदुओं के आधार पर कुरिया के कार्यों का मूल्यांकन की परिकल्पना की जा सकती है। एक ऐसा मूल्यांकन जो एक सिनोडल और प्रेरितिक संदर्भ के आधार पर होता है, जो अपने में परम धर्म पीठी और प्रतिनिधियों तक विस्तृत हो सकता है। अद लिमिना अर्थात 5 साल में एक मर्तबा संत पापा से क्षेत्रीय धर्माधर्शकों का मिलन, जिससे वे अपने धर्म प्रांत की स्थिति से उन्हें वाकिफ करा सकें। यह एक स्थानीय कलिसिया के धर्माध्यक्षकों और संत पापा, रोम के धर्माध्यक्ष और रोमन कोरिया के उनके निकटतम सहयोगियों के मध्य एक शीर्ष संबंध को व्यक्त करता है। बहुत से धर्माध्यक्ष गण इस भेंट के संबंध में इस बात की चाह रखते हैं कि इसका आयोजन इस भांति हो कि यह एक अधिक खुला अवसर बने जहां विचारों का आदान प्रदान और एक दूसरे को सुना जा सके। उनकी सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए यह आवश्यक है कि कलिसिया की भलाई हेतु धर्माधर्शकों को चाहिए कि वे एक दूसरे से भली भांति परिचित हों और उनके बीच एकता का संबंध कायम रहता हो। सिनोडालिटी उनके लिए संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के संग उनके आपसी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करे और वे अपनी आत्मपरख के माध्यम साधारण और अति विशेष बातों में निर्णय लें। श्रोताओं, धर्माध्यक्षों की धर्म सभा हमारे लिए एक प्रत्यक्ष सिनोडल और धर्माध्यक्ष मंडल में सहयोग के स्थल स्वरूप उभर कर आती है। प्रेरितिक संविधान में धर्माध्यक्षीय एकता को हम एक कलिसियाई प्रक्रिया के रूप में परिणत पाते हैं। संत पापा संत पॉल छाटवें ने सिनोड की स्थापना की जो धर्माध्यक्षकों की आम सभा को संदर्भित करता है, जिसका आयोजन रोम के परमाध्यक्ष की सहायता हेतु किया जाता है, जो वैश्विक कलिस्य की देख रेख की जिम्मेदारी को अपने में वहन करते हैं। आज एक स्तर की प्रक्रिया में विभाजित यह ईश प्रजा धर्माध्यक्षीय मंडल और संत पापा के मध्य विशेष संबंध को पोषित करता है। ईश्वर की सारी प्रजा धर्माध्यक्ष गण जिन्हें ईश्वर की प्रजा का एक छोटा अंग सुपुर्द किया जाता है और रोम के धर्माध्यक्ष पूरी सिनोडल प्रक्रिया में भाग लेते और हर कोई अपने को मिली जिम्मेदारी के अनुरूप कार्यों का निष्पादन करते हैं। इस सहभागिता की अभिव्यक्ति संत पापा के इर्द गिर्द धर्म सभा के विभिन्न मिलनों में होती है जो हमारे लिए कलिसिया में ख्रिस्त यता को प्रकट करती है। विशेष रूप से जैसे कि संत पापा फ्रांसिस ने इसका जिक्र किया, धर्माध्यक्षों की 16वीं धर्म सभा की रूपरेखा एक आकस्मिक घटना से बढ़कर है। यह धर्माध्यक्षीय प्रेरिताई के क्रियान्वयन में एक माध्यम को व्यक्त करता है जो कलिसिया की एक सजीव परंपरा और द्वितीय वैटिकन महासभा की शिक्षा पर आधारित है। धर्म सभा के धर्माध्यक्ष अपनी धर्माध्यक्षीय प्रकृति को बनाए रखते हुए इस बात को देखते और भविष्य में दूसरे ईश प्रजा की सहभागिता को देखेंगे। कलिसिया में धर्माध्यक्ष के अधिकार का उपयोग जिस रूप में किया जाता है वह प्रेरिताई के लिए अनिवार्य रूप से संबंधों की सचेतना को व्यक्त करता है जो उसे धर्म सभा निरूपित करता है। धर्म सभा के धर्माध्यक्षों की गहरे संबंध में इस बात की आवश्यकता को पाते हैं कि वे ईश प्रजा धर्माध्यक्षीय मंडल के कार्यों और संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के संग जुड़े होते हों जो ठोस रूप में पूरे आम सभा के धर्माध्यक्षीय प्रक्रिया में व्यक्त होती है। श्रोताओं, 2021 से 2024 की धर्म सभा के अति विशेष फलों में हम एकतावर्धक उत्साह को पाते हैं। एक माध्यम की खोज जिसके द्वारा प्राथमिकता का क्रियान्वयन किया जा सके, यद्यपि यह एक खुली परिस्थिति है। यह सिनोडल कलिसिया और ख्रिस्तीय एकता दोनों के लिए एक मूलभूत चुनौती बनती है। धर्म सभा एकता को बढ़ावा देने हेतु परम धर्म पीठ के वर्तमान प्रकाशन रोम के धर्माध्यक्ष एकतावर्धक वार्ता और विश्व पत्र उत उनुम सिंध के प्रत्युत्तर का स्वागत करता है जो आगे शोध हेतु मार्गों को प्रशस्त करता है। इस दस्तावेज में इस तथ्य की अभिव्यक्ति है कि ख्रिस्तीय एकता का प्रचार करना रोम के धर्माध्यक्ष की प्रेरिताई का एक अति मुख्य कार्य है और एकतावर्धक वार्ता की यात्रा ने इस संबंध में एक गहरी समझ को पोषित किया है। इसमें प्रथम वैटिकन महासभा की प्राथमिकता पर बनी कट्टर परिभाषाओं को फिर से पढ़ने या उन पर आधिकारिक टिप्पणी करने के बारे में ठोस प्रस्ताव है। संत पापा की अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच अंतर स्पष्ट, कलिसिया के अंदर और दुनिया के साथ उसके रिश्ते में सिनोडालिटी को बढ़ावा देना और कलिसियाओं की एकता के आदर्श की तलाश शामिल है जो एकतावर्धक यात्रा के लिए अच्छी संभावनाएं उत्पन्न करती हैं। धर्म सभा इस बात की आशा करती है यह दस्तावेज दूसरे ख्रिस्तियों से विचार मंथन करने हेतु एक आधार बने, एक साथ मिलकर निश्चित रूप में जिसे हम रोम के धर्माध्यक्ष की एकता हेतु प्रेरिताई स्वरूप पाते हैं जो उसे प्रेम की सेवा बनाती है जो सभों के द्वारा पहचानी जाती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माध्यक्षकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कनाडा में संत जेरोम विश्वविद्यालय ने एक नए संत पापा फ्रांसिस संस्थान की घोषणा की है, जिसका मकसद कनाडा और दुनिया भर में दिवंगत संत पापा फ्रांसिस की विरासत को आगे बढ़ाना है। यह संस्थान, जिसे दुनिया में अपनी तरह का पहला माना जाता है, संत पापा फ्रांसिस के मजिस्टेरियम से जुड़े कोर्स, लेक्चर और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। संत जेरोम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर पीटर मिहान कहते हैं कि संत पापा फ्रांसिस में गहरी प्रेरिताई वाली सोच थी। वे सच में दुनिया को समझते थे। वे द्वितीय वाटिकन महासभा के संदेश को समझते थे। डॉक्टर मिहान ने प्रवासन, पर्यावरण और सभी तरह की पृष्ठभूमि और सोच वाले लोगों तक पहुंचने हेतु स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस के ध्यान की तारीफ की, जो महासभा से निकले दुनिया के साथ जुड़ने के संदेश को दिखाता है। इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर मिहान कहते हैं कि संत पापा फ्रांसिस का संदेश हमारे समय के लिए सही है और नए संस्थान का काम उस विरासत को जिंदा रखना होगा। वे कहते हैं कि एक कैथोलिक विश्वविद्यालय एक कैथोलिक हॉस्पिटल की तरह होती है। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने विश्वविद्यालय से बाहर दुनिया की सेवा करें। इसलिए हालांकि एक बड़ा फोकस कलीसिया के अंदर अच्छा करना होगा। डॉक्टर मिहान इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें पता चल जाएगा कि हम सच में अपना काम कर रहे हैं, जब संस्थान गैर कैथोलिकों को भी आकर्षित करेगा। डॉक्टर मिहान से बात करने पर ऐसा लगता है कि संत पापा फ्रांसिस के बाद संत पापा लियो 14वें के परमाध्यक्ष बनने से संस्थान को नई रफ्तार मिली है। डॉक्टर मिहान कहते हैं, संत पापा लियो के परमाध्यक्ष बनने के बाद अब तक के दो मुख्य विषय हैं, सिनोडालिटी और द्वितीय वाटिकन महासभा को लागू करना। संत पापा लियो ने महासभा के मुख्य दस्तावेज पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से धर्म शिक्षा की एक लंबी सीरीज समर्पित की है। डॉक्टर मिहान बताते हैं कि ये विषय संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्ष बनने के समय के मुख्य विषय थे और इस साल के अंत में जब नया संस्थान आधिकारिक तौर पर खुलेगा तो ये उनके केंद्र में होंगे। उधर सिनड के मुख्य सचिवालय के महासचिव कार्डिनल ग्रेच 104वें कैथोलिक के टांग में सबसे ऊंचे पद पर वाटिकन के प्रतिनिधि थे, जो इस साल जर्मनी के बुर्जबर्ग में हुआ था। शनिवार को कार्डिनल ने बुर्जबर्ग कांग्रेस सेंटर में सिनोडालिटी पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया, जहां उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित किया। रविवार को उन्होंने समाप्ति मिस्सा समारोह का अनुष्ठान किया और संत पापा लियो की करीबी और आशीर्वाद भरा एक संदेश पढ़ा। कार्डिनल ग्रेच ने कहा, वे आपके करीब रहते हैं और एकता एवं मेल जोल के समर्थन में पूरे दिल से आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर वे आज यहाँ होते तो मुझे यकीन है कि वे आपसे कहते, हिम्मत रखें और आगे बढ़ें। कार्डिनल के मुताबिक एक सच्चे सिनोडल कलीसिया का भविष्य तभी होता है जब वह पवित्र आत्मा के लिए खुली रहती है। उन्होंने कहा, हमें स्थानीय कलीसिया के लिए स्थानीय धर्माध्यक्षों की प्रेरिताई और विश्वव्यापी कलीसिया के लिए परमाध्यक्षीय प्रेरिताई से बहुत आशीर्वाद मिला है। ये दोनों मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करें। अपने भाषण में उन्होंने प्रतिभागियों को सिनोडालिटी को एक स्वर की समता की तरह सोचने के लिए कहा, जिसमें हर वाद्य यंत्र की अपनी भूमिका और वैधता होती है, लेकिन उनमें तालमेल सबसे ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिस्सा लेना और साथ देना, एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े रहने चाहिए। सबसे बढ़कर कलीसिया को पवित्र आत्मा के काम के लिए जगह बनानी चाहिए और अपने मिशनरी पहलू को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उधर अमेरिकी कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन USCCB 10 से 12 जून तक ऑरलैंडो फ्लोरिडा में अपनी बसंत पूर्णकालीन सम्मेलन 2026 करेगी। सम्मेलन में धर्माध्यक्ष पौत्र मिस्सा के दौरान अमेरिका को यीशु के पौत्र हृदय को समर्पित करेंगे।
प्रतिष्ठापन का काम गुरुवार 11 जून को होगा और धर्माध्यक्ष पौत्र मिस्सा से पहले पौत्र हृदय पर एक चिंतन सुनेंगे। यह प्रतिष्ठापन काम ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका 4 जुलाई को स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने की 250वीं सालगिरह मना रहा है। इस पहल से उम्मीद है कि इस समारोह में ज्यादा से ज्यादा कैथलिक भाग लेंगे और इसे USCCB YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। पल्लियां और हर कैथलिक को प्रतिष्ठापन की तैयारी के लिए 250 घंटे की आराधना या 250 दया के कामों में भाग लेने के लिए बुलाया जा रहा है। 2024 में स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस ने यीशु के पौत्र हृदय के इंसानी और दिव्य प्रेम पर अपना विश्व पत्र दिलेक्सित नोस जारी किया था, जिसमें भक्ति को आज के दिखावटीपन के इलाज के तौर पर बताया गया था। उधर बंदूकधारियों ने अमेरिका के इस्लामिक सेंटर पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 2 हमलावरों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस इस हत्याकांड के मकसद की जांच कर रही है। अमेरिका के सान डिएगो के समय अनुसार दोपहर से कुछ देर बाद अलार्म बजा। पुलिस स्थानीय मस्जिद पहुंची, जहां गोली लगने से 3 लोग मरे पड़े मिले, जिनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड भी था, जिसने अधिकारियों के मुताबिक एक बड़ी घटना को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। कुछ ही मिनटों में कुछ ब्लॉक दूर नई गोलीबारी का एक और अलर्ट जारी किया गया। भाग्य से कोई और नुकसान नहीं हुआ। फिर हमलावरों ने खुद को एक कार में बंद कर लिया, जहां वे खुद को लगी चोटों से मरे हुए पाए गए। खबर है कि पैसेंजर कंपार्टमेंट में इस्लाम विरोधी संदेश मिले। इस हत्याकांड की जांच चल रही है, लेकिन मध्य पूर्व के अशांत हालात को देखते हुए पुलिस इसे घृणा अपराध के तौर पर देख रही है। पास के अल राशिद स्कूल को भी सुरक्षित कर लिया गया था और बिल्डिंग में मौजूद सभी बच्चों को तुरंत निकाल लिया गया था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

Te kratate,

Thank you.

0: पुरुष का चिन्ह,
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
0: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह की धर्म शिक्षा में साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर चिंतन शुरू किया। संत पापा लियो ने संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। आज हम द्वितीय वैटिकन महासभा के प्रथम दस्तावेज साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पवित्र धर्म विधि के सिद्धांत पर अपनी धर्म शिक्षा माला की एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे। इस धर्म सिद्धांत के अभिलेखन में धर्म सभा के पुरोहितों ने केवल धर्म विधि में एक नवनीकरण लाने का विचार नहीं किया, बल्कि कलीसिया को ख्रीस्त के रहस्य पर चिंतन करने और उस सजीव संबंध की गहराई से विचार मंथन करने को अग्रसर किया जो उसका निर्माण करती और उसे एकता में पिरोती है। वास्तव में धर्म विधि इस रहस्य के हृदय का स्पर्श करती है। यह हमारे लिए वह स्थल, समय और संदर्भ को व्यक्त करता है जिसे कलीसिया स्वयं यीशु ख्रीस्त के जीवन से प्राप्त करती है, क्योंकि धर्म विधि में मुक्ति विधान के कार्य हमारे लिए परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं जो हमें चुनी हुई वंशावली बनाती है। एक राजकीय पुरोहिताई, एक पवित्र राष्ट्र और एक प्रजा जिसे ईश्वर ने स्वयं अपने लिए बनाया है। संत पापा ने कहा, इसके त्रियामी नवीनता धर्म ग्रंथिय आचार्य और धर्म विधि जिससे होकर कलीसिया 20वीं सदी से होकर गुजरी, हमें इस बात का पता चलता है कि रहस्य का सवाल हमें एक अस्पष्ट सच्चाई को नहीं बल्कि ईश्वर की मुक्ति योजना को व्यक्त करता है जो वर्षों तक गुप्त रहा, जिसे हमारे लिए ख्रीस्त में प्रकट किया गया है, जैसे कि संत पौलुस हमें इसके बारे में कहते हैं। अतः यहाँ हम ख्रिस्तीय रहस्य को पाते हैं, अर्थात पास्का की एक घटना, कहने का अर्थ ख्रिस्त का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान और उनका महिमान्वित होना जो हमारे लिए संस्कार्य रूप में धर्म विधि में उपस्थित रहता है, जिससे हम जब कभी समुदाय के रूप में उनके नाम पर जमा होते हैं हम अपने को उस रहस्य से साराबोर करते हैं। संत पापा लियो ने कहा,
2: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa.
1: ख्रीस्त स्वयं हमारे लिए कलीसियाई रहस्य के आंतरिक उद्गम है। ईश्वर की पवित्र प्रजा जो क्रूस में उनके बेधित बगल से जन्मती है, पवित्र धर्म विधि में पवित्र आत्मा की शक्ति से वे कार्य करना जारी रखते हैं। वे अपनी वधु कलीसिया को पवित्र करती और उसकी एकता को बनाए रखते हैं, जिसके द्वारा वे अपने को पिता के लिए अर्पित करते हैं। वे अपनी अद्वितीय पुरोहिताई का उपयोग करते हैं। वे वचनों की उद्घोषणा में, संस्कारों में, पुरोहितों में जो बलि अर्पित करते, एकत्रित समुदाय में और सर्वश्रेष्ठ रूप में यूखरिस्तीय में उपस्थित रहते हैं। इस भांति संत अगुस्टिन के अनुसार यूखारिस्तीय समारोह के अनुष्ठान में कलिसिया ईश्वर के शरीर को ग्रहण करती है और वही बन जाती जिसे वह प्राप्त करती है। वह ख्रिस्त का शरीर बन जाती है, पवित्र आत्मा में ईश्वर का एक निवास स्थल। यह हमारी मुक्ति का कार्य है जो हमें यीशु ख्रिस्त से संयुक्त करता और हमें एकता में बनाए रखता है। संत पापा ने कहा कि पवित्र धर्म विधि में इस एकता की प्राप्ति रीतियों और प्रार्थनाओं के अनुष्ठान में होती है। रीतियों के अनुष्ठान में कलिसिया अपने विश्वास को व्यक्त करती है, जैसे कि हम उसे लेक्स ओरेंदी लेक्स क्रेडेंदी में अभिव्यक्त पाते हैं। इसके साथ ही यह हमारे लिए कलिसियाई पहचान को व्यक्त करती है। वचन की घोषणा, संस्कारों का अनुष्ठान, प्रतीकात्मक निशानियां, शांति स्थल, ये सारी चीजें पिता ईश्वर के द्वारा एकत्रित लोगों का प्रतिनिधित्व करती और उन्हें एक स्वरूप प्रदान करती जो पिता के द्वारा ख्रिस्त का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर स्वरूप एकत्रित किए जाते हैं। हर समारोह इस भांति हमारे लिए प्रार्थना में एक सच्ची ज्योति बनती है, जैसे कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय हमें याद दिलाते हैं। यदि धर्म विधि ख्रिस्त के रहस्य की सेवा है तो एक व्यक्ति यह समझता है कि क्यों इसे इस रूप में परिभाषित किया गया है। शिखर जिसकी ओर कलिसक के कार्य अभिमुख हैं, स्रोत जहां से उसकी सारी शक्ति प्रवाहित होती है। यह सच है कि कलिसक के कार्य केवल धर्म विधि तक ही सीमित नहीं है, जबकि उसके सारे क्रियाकलाप उपदेश दरिद्रों की सेवा मानवीय सच्चाइयों के संग चलना सारी चीजें उस शिखर की ओर अभिमुख होती हैं। इसके विपरीत धर्म विधि विश्वासियों का पोषण करती है, उन्हें यीशु के पास्का में सदैव डुबोती और उन्हें नवीन बनाती है और इस तरह वचन की उद्घोषणा द्वारा संस्कारों के अनुष्ठान और सामुदायिक प्रार्थना के माध्यम वे ताजे बनाए जाते, प्रोत्साहित किए जाते और विश्वास में अपनी निष्ठा और प्रेरिताई को नवीन बनाते हैं। दूसरे शब्दों में विश्वासियों का धर्म विधि के अनुष्ठान में सहभागिता अपने में आंतरिक और बाह्य दोनों है। संत पापा लियो ने कहा कि इसका अर्थ यह भी है कि हम अपने रोजमर्रे की जिंदगी में एक ठोस तरीके से एक नैतिक और आध्यात्मिक आयाम को स्थापित करने का निमंत्रण पाते हैं, जिससे धर्म विधि का अनुष्ठान हमारे जीवन में सार्थक बने और यह हमसे एक निष्ठा की मांग करती है, जिसके फलस्वरूप हम उन बातों को ठोस पाते हैं जिनका अनुभव हम समारोह में करते हैं। इस तरह से हमारा जीवन एक जीवित बलिदान बनता है जो पवित्र और ईश्वर को ग्रह्य होता है, जिसके द्वारा हमारी आध्यात्मिक आराधना पूरी होती है। इस तरह से धर्म विधि प्रतिदिन उनका निर्माण करती है जो ईश्वर के मंदिर में रहते हैं, एक खुले समुदाय का निर्माण जो सबों का स्वागत करती है। वास्तव में यह पवित्र आत्मा का निवास है जो हमें ख्रिस्त के जीवन से परिचय कराता है। वह हमें उनका शरीर बनाता है उनके सभी आयामों में। यह ख्रिस्त में सारी मानव जाति की एकता को एक निशानी स्वरूप व्यक्त करता है। जैसे संत पापा फ्रांसिस ने कहा है, दुनिया इसे अभी तक नहीं जानती है, लेकिन हर किसी को मेमने के विवाह भोज में सहभागी होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। संत पापा ने कहा,
2: Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti.
1: प्रिय मित्रों, हम अपने आंतरिक रूप से धर्म विधि के क्रियाकलापों, चिन्हों, उसके निशानियों और उससे भी बढ़कर धर्म विधि में ख्रिस्त की जीवित निशानी से अपने को पोषित होने दें, जिसकी खोज करने का अवसर हमें आने वाले धर्म शिक्षाओं में मिलेगा। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में बुधवार आम दर्शन समारोह में कैथोलिकोस प्रादि धर्माध्यक्ष आराम प्रथम संत पापालियो के साथ स्टेज पर शामिल हुए। ठीक दो दिन पहले जब दोनों कलीसियाई धर्मगुरु सोमवार 18 मई को वाटिकन प्रेरितिक भवन में मिले थे और साथ में प्रार्थना की थी। संत पापालियो 14वें ने बुधवार आम दर्शन समारोह में अर्मेनियाई प्रेरितिक कलीसिया सिलिसिया के कैथोलिकोस प्रादि धर्माध्यक्ष आराम प्रथम का अभिवादन करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, मुझे अर्मेनियाई प्रेरितिक कलीसिया के सिलिसिया के कैथोलिकोस प्रादि धर्माध्यक्ष आराम प्रथम और उनके साथ आए जाने माने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह भाईचारे वाला दौरा हमारे बीच पहले से मौजूद एकता के रिश्ते को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि हम अपनी कलीसियाओं के बीच पूरी तरह से एकता की ओर बढ़ रहे हैं। संत पापा ने कहा, इन दिनों जब हम पेंतेकोस्त की तैयारी कर रहे हैं, मैं प्रेरित संत पेत्रुस और पौलुस की कब्रों पर आपकी यात्रा पर पवित्र आत्मा की कृपा की दुआ करता हूं और मैं यहां मौजूद सभी लोगों से प्रभु से दिल से प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आपकी यात्रा और सभाएं पूरी एकता की राह पर एक और कदम बने। आइए हम लेबनान और मध्य पूर्व में शांति के लिए भी प्रार्थना करें, जो एक बार फिर हिंसा और युद्ध से टूट गया है। इसके बाद संत पापा ने ख्रिस्तीय एकता के प्रति उनके लगातार व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए खासकर कैथोलिक कलीसिया और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय थियोलॉजिकल बातचीत के लिए अपना खास आभार व्यक्त किया। आम दर्शन समारोह के दौरान अपने अभिवादन में पोलिश भाषी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने कहा, 40 साल पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने प्रेरितिक प्रबोधन डोमिनुम एत विविफिकेतुम प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने याद दिलाया था कि पवित्र आत्मा दिलों की रोशनी है और हमें अच्छे और बुरे को नाम से पुकारने की इजाजत देती है। जैसे हम पेंतेकोस्त का इंतजार कर रहे हैं, आइए हम ईश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें कि वह अपने उपहारों से अंतरात्मा को जगाएं, उन्हें अन्याय, हिंसा और युद्ध से दूर करे और धरती को नया रूप दे। और इताली भाषी विश्वासियों के अभिवादन में विशेषकर युवा एथलीटों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने कहा, मैं एथिक्स इन स्पोर्ट मूवमेंट द्वारा प्रमोट किए गए कार्यक्रम के प्रतिभागियों का दिल से स्वागत करता हूं और मैं उन युवा एथलीटों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी खेल गतिविधियों से प्रेरित होकर एक निबंध लिखा है। प्यारे दोस्तों, आपका एक नेक मिशन है खेल की आत्मा को बचाए रखना। याद रखें कि असली लक्ष्य भौतिक जीत नहीं है, बल्कि अपने विरोधी का सम्मान, निष्पक्ष खेल और सभी को शामिल करना है। और मंगलवार शाम को जब संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो में विल्ला बारबारेनी से निकले, तो संत पापा का इंतजार एक बड़ी भीड़ कर रही थी। पोप लियो और लॉन्ग लिव द पोप के नारों के बीच कुछ लोगों ने बेनेडिकात गाया। यह फ्रांसिस्कन मंत्र है जिसमें फ्रातेर लियो ईश्वर का आशीर्वाद मांगते हैं। संत पापा ने हाथ मिलाया। मेक्सिको, ब्राजील, ग्वाटेमाला और निकारगुआ के तीर्थ यात्रियों का अभिवादन किया और अपनी टोपी उन लोगों के साथ बदली जिन्होंने उन्हें वैसे ही टोपी दी थी, जबकि कई लोगों ने अपने स्मार्टफोन से इस समय को यादगार बनाने और उनका वीडियो बनाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उन्हें चिकलायो के कुकीज दिए, जो पेरू का वह धर्म प्रांत है जिसके संत पापा एक समय धर्माध्यक्ष थे। इसके बाद संत पापा ने एक दंपति को आशीर्वाद दिया जिन्होंने हाल ही में अपने 22 साल के बेटे को खो दिया। उधर अधिकारियों, धार्मिक नेताओं और सभी लोगों को संबोधित करते हुए दक्षिण सूडान में टेम्बूरा याम्बियो काउंटी के धर्माध्यक्ष एडवार्डो हिबोरा ने सभी पृष्ठभूमि के लोगों से सम्मान के साथ बातचीत करने, मेल मिलाप और एकता की संस्कृति को फिर से शुरू करने की अपील की। धर्माध्यक्ष एडवार्डो हिबोरो के अनुसार दक्षिण सूडान के वेस्टर्न इक्वेटोरिया राज्य को पहले दक्षिण सूडान की रोटी की टोकरी,
दक्षिण सूडान का हरा भरा दिल, मेहमान नवाजी का बगीचा, बातचीत की मातृभूमि, कड़ी मेहनत की जमीन, मानव गरिमा का मंदिर कहा जाता था। लेकिन सालों की हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मुश्किलों, भरोसे में कमी और जगह बदलने से हमारे सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंची है। उन्होंने अधिकारियों, धार्मिक नेताओं और पूरी आबादी को संबोधित करते हुए दुख जताया। फिडेस न्यूज के अनुसार वेस्टर्न इक्विटोरियन राज्य ने लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी LRA के कई हमलों का सामना किया है और इन सालों में कई तरह की लड़ाइयों का सामना किया है। फिर भी धर्माध्यक्ष हिबोरो ने इस बात पर जोर दिया कि सभी दर्दनाक सालों में से एक सच्चाई बहुत साफ हो गई है। हिंसा से हमारे समुदाय ठीक नहीं हुए, नफरत से भरोसा वापस नहीं आया, बदले से शांति नहीं आई। धर्माध्यक्ष हिबोरो ने कहा कि सच्ची शांति बातचीत से आती है। इसी वजह से उन्होंने अपील की, आइए हम इज्जतदार बातचीत, मेल मिलाप और एकता की संस्कृति को फिर से शुरू करें। धर्माध्यक्ष हिबोरो ने सभी स्तर और पद के अधिकारियों, कलीसिया, युवा, महिलाओं, बुद्धिजीवियों, नागर समाज और परिवारों से इलाज और शांति के पुल बनने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने मानव जीवन की पवित्रता को बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया, क्योंकि जीवन ईश्वर का उपहार है। अपने संदेश में धर्माध्यक्ष हिबोरो ने बताया कि मीडिया का गलत इस्तेमाल कैसे नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी, आज एक लापरवाह भरा संदेश पीढ़ियों से बने रिश्तों को खत्म कर सकता है। शब्दों में ताकत होती है, क्योंकि वे बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं या बांट सकते हैं। इसलिए धर्माध्यक्ष ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया जो जोड़ने वाली, शिष्ट, ज्ञानपूर्ण, हिम्मत बढ़ाने वाली और जिम्मेदार हो। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह की धर्म शिक्षा में साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर चिंतन शुरू किया। संत पापा लियो ने संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। आज हम द्वितीय वैटिकन महासभा के प्रथम दस्तावेज साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पवित्र धर्म विधि के सिद्धांत पर अपनी धर्म शिक्षा माला की एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे। इस धर्म सिद्धांत के अभिलेखन में धर्म सभा के पुरोहितों ने केवल धर्म विधि में एक नवनीकरण लाने का विचार नहीं किया, बल्कि कलिस्य को ख्रिस्त के रहस्य पर चिंतन करने और उस सजीव संबंध की गहराई से विचार मंथन करने को अग्रसर किया जो उसका निर्माण करती और उसे एकता में पिरोती है। वास्तव में धर्म विधि इस रहस्य के हृदय का स्पर्श करती है। यह हमारे लिए वह स्थल, समय और संदर्भ को व्यक्त करता है जिसे कलीसिया स्वयं यीशु ख्रिस्त के जीवन से प्राप्त करती है, क्योंकि धर्म विधि में मुक्ति विधान के कार्य हमारे लिए परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं जो हमें चुनी हुई वंशावली बनाती है। एक राजकीय पुरोहिताई, एक पवित्र राष्ट्र और एक प्रजा जिसे ईश्वर ने स्वयं अपने लिए बनाया है। संत पापा ने कहा, इसके त्रियामी नवीनता धर्म ग्रंथीय आचार्य और धर्म विधि जिससे होकर कलीसिया 20वीं सदी से होकर गुजरी, हमें इस बात का पता चलता है कि रहस्य का सवाल हमें एक अस्पष्ट सच्चाई को नहीं बल्कि ईश्वर की मुक्ति योजना को व्यक्त करता है जो वर्षों तक गुप्त रहा, जिसे हमारे लिए ख्रिस्त में प्रकट किया गया है, जैसे कि संत पौलुस हमें इसके बारे में कहते हैं। अतः यहाँ हम ख्रिस्तीय रहस्य को पाते हैं, अर्थात पास्का की एक घटना। कहने का अर्थ, ख्रिस्त का दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान और उनका महिमान्वित होना जो हमारे लिए संस्कार्य रूप में धर्म विधि में उपस्थित रहता है, जिससे हम जब कभी समुदाय के रूप में उनके नाम पर जमा होते हैं, हम अपने को उस रहस्य से साराबोर करते हैं। संत पापा लियो ने कहा,
2: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa.
1: ख्रिस्त स्वयं हमारे लिए कलीसियाई रहस्य के आंतरिक उद्गम है। ईश्वर की पवित्र प्रजा जो क्रूस में उनके बेधित बगल से जन्मती है।

0: पवित्र धर्म विधि में पवित्र आत्मा की शक्ति से वे कार्य करना जारी रखते हैं। वे अपनी वधु कलिसक को पवित्र करते और उसकी एकता को बनाए रखते हैं, जिसके द्वारा वे अपने को पिता के लिए अर्पित करते हैं। वे अपनी अद्वितीय पुरोहिताई का उपयोग करते हैं। वे वचनों की उद्घोषणा में, संस्कारों में, पुरोहितों में जो बलि अर्पित करते, एकत्रित समुदाय में और सर्वश्रेष्ठ रूप में यूखरिस्ती में उपस्थित रहते हैं। इस भांति संत अगुस्टिन के अनुसार यूखरिस्ती समारोह के अनुष्ठान में कलिसिया ईश्वर के शरीर को ग्रहण करती है और वही बन जाती जिसे वह प्राप्त करती है। वह ख्रिस्त का शरीर बन जाती है, पवित्र आत्मा में ईश्वर का एक निवास स्थल। यह हमारी मुक्ति का कार्य है जो हमें यीशु ख्रिस्त से संयुक्त करता और हमें एकता में बनाए रखता है। संत पापा ने कहा कि पवित्र धर्म विधि में इस एकता की प्राप्ति रीतियों और प्रार्थनाओं के अनुष्ठान में होती है। रीतियों के अनुष्ठान में कलिसिया अपने विश्वास को व्यक्त करती है, जैसे कि हम उसे लेक्स ओरेंदी, लेक्स क्रेडेंदी में अभिव्यक्त पाते हैं। इसके साथ ही यह हमारे लिए कलिसियाई पहचान को व्यक्त करती है। वचन की घोषणा, संस्कारों का अनुष्ठान, प्रतीकात्मक निशानियां, शांति स्थल, ये सारी चीजें पिता ईश्वर के द्वारा एकत्रित लोगों का प्रतिनिधित्व करती और उन्हें एक स्वरूप प्रदान करती जो पिता के द्वारा ख्रिस्त का शरीर, पवित्र आत्मा का मंदिर स्वरूप एकत्रित किए जाते हैं। हर समारोह इस भांति हमारे लिए प्रार्थना में एक सच्ची ज्योति बनती है, जैसे कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय हमें याद दिलाते हैं। यदि धर्म विधि ख्रिस्त के रहस्य की सेवा है, तो एक व्यक्ति यह समझता है कि क्यों इसे इस रूप में परिभाषित किया गया है। शिखर जिसकी ओर कलिसक के कार्य अभिमुख हैं, स्रोत जहां से उसकी सारी शक्ति प्रवाहित होती है। यह सच है कि कलिसक के कार्य केवल धर्म विधि तक ही सीमित नहीं है, जबकि उसके सारे क्रियाकलाप, उपदेश, दरिद्रों की सेवा, मानवीय सच्चाइयों के संग चलना, सारी चीजें उस शिखर की ओर अभिमुख होती हैं। इसके विपरीत धर्म विधि विश्वासियों का पोषण करती है, उन्हें यीशु के पास्का में सदैव डुबोती और उन्हें नवीन बनाती है, और इस तरह वचन की उद्घोषणा द्वारा, संस्कारों के अनुष्ठान और सामुदायिक प्रार्थना के माध्यम वे ताजे बनाए जाते, प्रोत्साहित किए जाते और विश्वास में अपनी निष्ठा और प्रेरिताई को नवीन बनाते हैं। दूसरे शब्दों में विश्वासियों का धर्म विधि के अनुष्ठान में सहभागिता अपने में आंतरिक और बाह्य दोनों है। संत पापा लियो ने कहा कि इसका अर्थ यह भी है कि हम अपने रोजमर्रे की जिंदगी में एक ठोस तरीके से एक नैतिक और आध्यात्मिक आयाम को स्थापित करने का निमंत्रण पाते हैं, जिससे धर्म विधि का अनुष्ठान हमारे जीवन में सार्थक बने, और यह हमसे एक निष्ठा की मांग करती है, जिसके फलस्वरूप हम उन बातों को ठोस पाते हैं जिनका अनुभव हम समारोह में करते हैं। इस तरह से हमारा जीवन एक जीवित बलिदान बनता है जो पवित्र और ईश्वर को ग्रह्य होता है, जिसके द्वारा हमारी आध्यात्मिक आराधना पूरी होती है। इस तरह से धर्म विधि प्रतिदिन उनका निर्माण करती है जो ईश्वर के मंदिर में रहते हैं, एक खुले समुदाय का निर्माण जो सबों का स्वागत करती है। वास्तव में यह पवित्र आत्मा का निवास है जो हमें ख्रिस्त के जीवन से परिचय कराता है। वह हमें उनका शरीर बनाता है उनके सभी आयामों में। यह ख्रिस्त में सारी मानव जाति की एकता को एक निशानी स्वरूप व्यक्त करता है। जैसे संत पापा फ्रांसिस ने कहा है, दुनिया इसे अभी तक नहीं जानती है, लेकिन हर किसी को मेमने के विवाह भोज में सहभागी होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। संत पापा ने कहा,
1: Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti.
0: प्रिय मित्रों, हम अपने आंतरिक रूप से धर्म विधि के क्रियाकलापों, चिन्हों, उसके निशानियों और उससे भी बढ़कर धर्म विधि में ख्रीस्त की जीवित निशानी से अपने को पोषित होने दें, जिसकी खोज करने का अवसर हमें आने वाले धर्म शिक्षाओं में मिलेगा। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सन पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में बुधवार आमदर्शन समारोह में कैथोलिकोस प्रादि धर्माध्यक्ष आराम प्रथम संत पापालियो के साथ स्टेज पर शामिल हुए। ठीक दो दिन पहले जब दोनों कलीसियाई धर्मगुरु सोमवार 18 मई को वाटिकन प्रेरितिक भवन में मिले थे और साथ में प्रार्थना की थी। संत पापालियो 14वें ने बुधवार आमदर्शन समारोह में अर्मेनियाई प्रेरितिक कलीसिया सिलिसिया के कैथोलिकोस प्रादि धर्माध्यक्ष आराम प्रथम का अभिवादन करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, मुझे अर्मेनियाई प्रेरितिक कलीसिया के सिलिसिया के कैथोलिकोस प्रादि धर्माध्यक्ष आराम प्रथम और उनके साथ आए जाने माने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह भाईचारे वाला दौरा हमारे बीच पहले से मौजूद एकता के रिश्ते को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि हम अपनी कलीसियाओं के बीच पूरी तरह से एकता की ओर बढ़ रहे हैं। संत पापा ने कहा, इन दिनों जब हम पेंतेकोस्त की तैयारी कर रहे हैं, मैं प्रेरित संत पेत्रुस और पौलुस की कब्रों पर आपकी यात्रा पर पवित्र आत्मा की कृपा की दुआ करता हूं और मैं यहां मौजूद सभी लोगों से प्रभु से दिल से प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आपकी यात्रा और सभाएं पूरी एकता की राह पर एक और कदम बने। आइए हम लेबनान और मध्य पूर्व में शांति के लिए भी प्रार्थना करें, जो एक बार फिर हिंसा और युद्ध से टूट गया है। इसके बाद संत पापा ने ख्रिस्तीय एकता के प्रति उनके लगातार व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए खासकर कैथोलिक कलीसिया और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय थियोलॉजिकल बातचीत के लिए अपना खास आभार व्यक्त किया। आम दर्शन समारोह के दौरान अपने अभिवादन में पोलिश भाषी विश्वासियों और तीर्थ यात्रियों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने कहा, 40 साल पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने प्रेरितिक प्रबोधन डोमिनुम एत विविफिकेतुम प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने याद दिलाया था कि पवित्र आत्मा दिलों की रोशनी है और हमें अच्छे और बुरे को नाम से पुकारने की इजाजत देती है। जैसे हम पेंतेकोस्त का इंतजार कर रहे हैं, आइए हम ईश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें कि वह अपने उपहारों से अंतरात्मा को जगाएं, उन्हें अन्याय, हिंसा और युद्ध से दूर करे और धरती को नया रूप दे। और इताली भाषी विश्वासियों के अभिवादन में विशेषकर युवा एथलीटों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने कहा, मैं एथिक्स इन स्पोर्ट मूवमेंट द्वारा प्रमोट किए गए कार्यक्रम के प्रतिभागियों का दिल से स्वागत करता हूं और मैं उन युवा एथलीटों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी खेल गतिविधियों से प्रेरित होकर एक निबंध लिखा है। प्यारे दोस्तों, आपका एक नेक मिशन है खेल की आत्मा को बचाए रखना। याद रखें कि असली लक्ष्य भौतिक जीत नहीं है, बल्कि अपने विरोधी का सम्मान, निष्पक्ष खेल और सभी को शामिल करना है। और मंगलवार शाम को जब संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो में विल्ला बारबारेनी से निकले तो संत पापा का इंतजार एक बड़ी भीड़ कर रही थी। पोप लियो और लॉन्ग लिव द पोप के नारों के बीच कुछ लोगों ने बेनेडिकात गाया। यह फ्रांसिस्कन मंत्र है जिसमें फ्रातेर लियो ईश्वर का आशीर्वाद मांगते हैं। संत पापा ने हाथ मिलाया मेक्सिको, ब्राजील, ग्वाटेमाला और निकारगुआ के तीर्थ यात्रियों का अभिवादन किया और अपनी टोपी उन लोगों के साथ बदली जिन्होंने उन्हें वैसे ही टोपी दी थी, जबकि कई लोगों ने अपने स्मार्टफोन से इस समय को यादगार बनाने और उनका वीडियो बनाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उन्हें चिकलायो के कुकीज दिए, जो पेरू का वह धर्म प्रांत है जिसके संत पापा एक समय धर्माध्यक्ष थे। इसके बाद संत पापा ने एक दंपति को आशीर्वाद दिया जिन्होंने हाल ही में अपने 22 साल के बेटे को खो दिया। उधर अधिकारियों, धार्मिक नेताओं और सभी लोगों को संबोधित करते हुए दक्षिण सूडान में टेम्बूरा यांबियो काउंटी के धर्माध्यक्ष एडवार्डो हिबोरा ने सभी पृष्ठभूमि के लोगों से सम्मान के साथ बातचीत करने, मेल मिलाप और एकता की संस्कृति को फिर से शुरू करने की अपील की। धर्माध्यक्ष एडवार्डो हिबोरो के अनुसार दक्षिण सूडान के वेस्टर्न इक्वेटोरिया राज्य को पहले दक्षिण सूडान की रोटी की टोकरी,
दक्षिण सूडान का हरा भरा दिल, मेहमान नवाजी का बगीचा, बातचीत की मातृभूमि, कड़ी मेहनत की जमीन, मानव गरिमा का मंदिर कहा जाता था। लेकिन सालों की हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मुश्किलों, भरोसे में कमी और जगह बदलने से हमारे सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंची है। उन्होंने अधिकारियों, धार्मिक नेताओं और पूरी आबादी को संबोधित करते हुए दुख जताया। फिडेस न्यूज के अनुसार वेस्टर्न इक्विटोरियन राज्य ने लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी LRA के कई हमलों का सामना किया है और इन सालों में कई तरह की लड़ाइयों का सामना किया है। फिर भी धर्माध्यक्ष हिबोरो ने इस बात पर जोर दिया कि सभी दर्दनाक सालों में से एक सच्चाई बहुत साफ हो गई है। हिंसा से हमारे समुदाय ठीक नहीं हुए, नफरत से भरोसा वापस नहीं आया, बदले से शांति नहीं आई। धर्माध्यक्ष हिबोरो ने कहा कि सच्ची शांति बातचीत से आती है। इसी वजह से उन्होंने अपील की, आइए हम इज्जतदार बातचीत, मेल मिलाप और एकता की संस्कृति को फिर से शुरू करें। धर्माध्यक्ष हिबोरो ने सभी स्तर और पद के अधिकारियों, कलीसिया, युवा, महिलाओं, बुद्धिजीवियों, नागर समाज और परिवारों से इलाज और शांति के पुल बनने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने मानव जीवन की पवित्रता को बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया, क्योंकि जीवन ईश्वर का उपहार है। अपने संदेश में धर्माध्यक्ष हिबोरो ने बताया कि मीडिया का गलत इस्तेमाल कैसे नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी, आज एक लापरवाह भरा संदेश पीढ़ियों से बने रिश्तों को खत्म कर सकता है। शब्दों में ताकत होती है, क्योंकि वे बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं या बांट सकते हैं। इसलिए धर्माध्यक्ष ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया जो जोड़ने वाली, शिष्ट, ज्ञानपूर्ण, हिम्मत बढ़ाने वाली और जिम्मेदार हो। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।